आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

कानवे दशमलव दो मेगा हर पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
1: सर, टेस्ट ड्राइव।
0: टेस्ट।
2: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो। सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: टेस्टिंग।
1: टेस्ट।
4: बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो।
5: टेस्टिंग।
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
7: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है, और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
8: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
9: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
10: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
11: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
9: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
11: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देखकर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स।

भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल

0: लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
1: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
2: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
3: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। श्रोताओ अब से लेके 11 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपके साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियां साझा, और साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए लेकर के आए हैं आज हम प्यारे प्यारे से गीत। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान कितना है। श्रोताओ 12 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है और हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी कहीं कहीं पे हो रही है और नमी है 67%। और बात करें दिन भर के मौसम की तो बादल छाए रहेंगे और आने वाले दिनों में भी मौसम थोड़ा बहुत ख़राब होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं। आइए आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का सबसे पहले इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और अब कार्यक्रम में समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का। तो आइए सुनते हैं आज का विचार। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जिंदगी में हमारे जितने भी फैसले होते हैं उनमें सिर्फ दो ही शब्दों का इस्तेमाल होता है, या तो हाँ या फिर ना, और यही हाँ और ना हमारी जिंदगी को और जिंदगी के सभी फैसलों को बदल कर रख देता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला लेना हो, तो हाँ और ना के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके ही निर्णय लें, क्योंकि आपकी हाँ और आपकी ना पर ही निर्भर करता है उस कार्य का और पूरी जिंदगी का निर्णय। और आपका वो हाँ और ना ही आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए अच्छे से सोचें विचारें, और उसके बाद ही चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा हो, हाँ या ना कहना हो, तो पूरी ताकत के साथ, धैर्य के साथ सोच समझ कर ही हाँ और ना का इस्तेमाल करें। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और कार्यक्रम में आप आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बातचीत का भी आनंद उठाते हैं, तो आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि इस वक्त रेडियो गुंजन को आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। और हमारे जो देश के प्रहरी हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, वो हम भारतीयों को अपने घरों में, अपने कामकाज में व्यस्त रहने का और ज़िंदगी जीने का आनंद उठाने देते हैं, क्योंकि वो सीमा पर तैनात रहते हैं। जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी होती है, वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ डटे रहते हैं। और इस वक्त हमारे कुछ नौसेना के जो सैनिक हैं, रेडियो गुंजन को सुन रहे हैं। उनसे कुछ समय पहले मैसेज के माध्यम से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त रेडियो गुंजन को सुन रहे हैं। और रेडियो गुंजन एक ऐसा माध्यम है श्रोताओं, जो आपको देश दुनिया से दूर रहकर भी अपने प्रदेश की, अपने घर की याद दिलाता रहता है और ये एहसास दिलाता रहता है कि हम अपने घर से दूर नहीं है। तो श्रोताओं, इस एहसास को हम यूं ही बनाए रखने के लिए आते हैं आपके साथ रेडियो गुंजन के माध्यम से जुड़ने के लिए, और आप हमारे साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन 91.2 MHz। इस वक्त आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद, यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के बाद कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा। आप भी बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए दाखिल। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी। जनगणना 2027 के लिए सिरमौर जिला में पहले चरण की जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम खराब। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का किया अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से पहले 3 बजे के बीच होगा। शहरी निकाय चुनावों के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। जनगणना 2027 के लिए जनगणना को 2 चरणों में किया जा रहा है। फिलहाल पहले चरण की जनगणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला में जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जनगणना में कार्य करने जा रहे कर्मचारियों को नाहन में विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। जनगणना के मद्देनजर जिला में 30 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: जनगणना 2027 को लेकर सिरमौर जिला में सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा। जिला में जनगणना के लिए नियुक्त किए गए फील्ड ट्रेनर्स के लिए नाहन में विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन्हें मुख्य रूप से तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर मास्टर्स ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जनगणना कार्य के दौरान लोगों से सही जानकारी साझा करने की अपील करते हुए कहा कि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से मैं सतीश शर्मा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज सुबह 11 बजे 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड ने CBSE सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट 26 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिणाम सहित अंतिम उत्तर कुंजी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाधान समारोह शीर्ष लोक अदालत 2026 का आयोजन 21 अप्रैल से आरंभ किया गया है। इस अभियान का समापन 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में शीर्ष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति व सुलह के माध्यम से निपटारा करना है। इसके तहत पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा, जो 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया है, ताकि संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान संभव हो सके। सुलह बैठकों में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकते हैं। अपने मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने हेतु एक सरल गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे भरकर इच्छुक पक्ष अपने मामलों को इस अभियान में सम्मिलित कर सकते हैं। फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे भरने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @EIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला के ऐतिहासिक चौगान में दो दिनों तक चले आईपीएल फैन पार्क का कल रात गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए क्रिकेट मुकाबले के साथ ही समापन हो गया। वहीं दोपहर के समय भी दर्शकों ने सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव देखने का आनंद लिया। यहां पहुंचे हजारों क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा अनुभव दिया गया। दर्शकों ने यहां स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए फूड स्टॉल में स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया। इसके अलावा युवाओं और बच्चों ने विभिन्न में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव मनोज शर्मा ने आयोजकों का चंबा जैसे दूरदराज जिला में इस तरह के आयोजन को संपन्न करवाने के लिए किए गए सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि 50 शहरों में इस तरह के फैन पार्क स्थापित किए गए थे। चंबा में भी इस आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। प्रदेश में बीते दो दिनों से बारिश के साथ अंधड़ चलने से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज भी भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 और 7 मई को येलो अलर्ट जारी किया है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सहयोग से आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने खराब मौसम से हुए नुकसान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, अंधड़ के साथ भारी बारिश, छतें उड़ी, पेड़ उखड़े, कई जिलों में ब्लैकआउट, चोटियों पर हिमपात। दिव्य हिमाचल के शब्द है, बेमौसमी बरसात, आंधी से फल फसल बर्बाद। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, 9 मई तक मौसम खराब। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, रद्द 15 बिजली परियोजनाओं को दोबारा अलॉट करेगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, आपातकालीन सेवाओं में हिमाचल पुलिस देश में नंबर 1, रिस्पांस टाइम महज 3 मिनट 36 सेकंड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर बस हादसे पर दैनिक जागरण लिखता है, चालक को हृदयाघात, बस पलटने से 28 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए दाखिल। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी। मतगणना 2027 के लिए सिरमौर जिला में पहले चरण की जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम खराब। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का किया अलर्ट जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सीधा सीधा लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी दी कि 11 केवी योल फीडर के क्षेत्रों सिद्धबाड़ी, ग्योतो मनिस्ट्री, योल बाजार, बन्नी बनोरड़ू, चतेहड़, स्लेट गोदाम, थेरू, खलूड़ बारग, नरवाणा, जलोह, तंगरोटी, रक्कड़, उथड़ा ग्रां, दरूनी माता, रसां आदि क्षेत्रों में 4 मई यानी आज सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं और लीजिए अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आप करते हैं थोड़ी सी बातचीत। और बता दें श्रोताओं आप सभी को कि धर्मशाला में 11 मई को होने वाले पंजाब बनाम दिल्ली आईपीएल मैच की ऑनलाइन टिकट्स की बिक्री जो है वो शुरू हो गई है, और कंपनी ने विंडो खुलते ही सस्ती टिकट के स्टैंड जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। श्रोताओं ये जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आईपीएल के चलते जो स्टेडियम है उनमें सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। और स्टेडियम हमारा धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक माना जाता है, और इसी के चलते देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हर दिन हज़ारों की संख्या में इसका दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आज यानी 4 मई से जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं स्टेडियम का लुत्फ इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, वो आज से बंद हो जाएगा। और जैसे ही आईपीएल मैचेस का यहाँ पे जो सिलसिला है वो बंद होगा, उसके बाद दोबारा से जो टूरिस्ट हैं आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए ये स्टेडियम जो है वो खुलेगा। और इसके दौरान आप क्रिकेट मैचेस का आनंद यहाँ पे उठा सकते हैं जो कि 11, 14 और 17 मई को यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी, आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब कार्यक्रम में चलते हैं इतिहास की ओर, जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

श्रोताओं, आज यानी 4 मई 1799 मैसूर के शेर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। चार मई 1854 भारत में औपचारिक रूप से पहला डाक टिकट जारी किया गया था। 4 मई 1896 लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 4 मई 2011 स्टार वॉर्स की लोकप्रियता के कारण इस दिन को आधिकारिक रूप से सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी। 4 मई 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण किया था। 4 मई 1959 पहला ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया था।

अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, ये थी कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है 4 मई 2026 और हर साल 4 मई को दुनिया भर के समुदाय अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाने के लिए एकजुट होते हैं। ये दिन उन अग्निशामकों की बहादुरी, प्रतिबद्धता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये उनकी अटूट सेवा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने और कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान देने वालों को याद करने का समय है। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 1999 में स्थापित, ये दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो समुदायों और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई 2026 को मनाया जाएगा और इसके बारे में श्रोताओं विस्तार से आपको विवरण हम जरूर देंगे, लेकिन कार्यक्रम में अब समय है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के बारे में आपको और भी हम बताएंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। हिमाचल प्रदेश

अंत तक दसवीं के परिणाम भी बोर्ड की ओर से जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के इस निर्णय से न केवल छात्रों बल्कि अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इसी परिणाम पर उच्च शिक्षा और करियर की अगली डगर टिकी है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब समय है छोटे से अंतराल का। बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतराल के बाद चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और इस गीत को सुनते सुनते कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि कई बार हमारे जो फिल्मों के गीत होते हैं वो बहुत ही, उनका लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें ज़िंदगी जीने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और इस गीत में ऐसा बहुत कुछ खास तो नहीं था, लेकिन इसकी एक लाइन की, इस पल में जी लें चल। और कई बार हम ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है, आज नहीं कल जिएंगे। अगर कुछ हमने सोचा है कि कुछ करना है अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का, तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, फिर भी हम टालते रहते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। और आज नहीं कल के चक्कर में वो कहते हैं कि ट्रेन छूट जाती है और बड़ा कुछ है जो यूं ही धरे का धरा रह जाता है, और हम ज़िंदगी को जी नहीं पाते खुल के। इसलिए ज़िंदगी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों, इसे जीने का जब भी मौका मिले उसे ज़रूर जीना चाहिए। हर चीज़ को कल के इंतज़ार में गवाइए मत, हर चीज़ को हम यूं ही, कई बार वो कहते हैं ना कि कल कल के इंतज़ार में जो कल है वो कभी आता नहीं है। इसलिए आज आपको जब भी, जहां भी, जो भी मौका मिले ज़िंदगी को अच्छे से जीने का, उसे ज़रूर जिए। 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ये मनाया जाता है 4 मई को, और इसकी शुरुआत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 1999 में हुई थी। विक्टोरिया के जंगल में आग लगने से 5 दमकल कर्मियों की दुखद मृत्यु होने के बाद उन्हीं को, उनके जो त्याग, समर्पण और बलिदान है उसको याद करने के लिए, और उनके साथ साथ और भी हमारे जो दमकल कर्मी हैं उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए आज का जो ये दिन है ये मनाया जाता है विश्व भर में। विश्व भर के अग्निशामकों के बलिदान, समर्पण और सेवा को सम्मानित और मान्यता देने के लिए आज का दिन जो है ये मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन के बारे में भी कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओ आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस की स्थापना 1998 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लगी भीषण आग में 5 अग्निशामकों की दुखद मृत्यु के बाद हुई थी। इस दिवस का प्रस्ताव स्वयंसेवी अग्निशामक जे जे एनमंडसन ने उनकी स्मृति को सम्मान देने और विश्व स्तर पर अग्निशामकों द्वारा किए गए बलिदानों को मान्यता देने के लिए रखा था। 4 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये अग्निशामकों के संरक्षक संत सेंट फ्लोरियन का पर्व दिवस है। सेंट फ्लोरियन एक रोमन अधिकारी थे जिन्होंने अग्निशमन दल संगठित किए और जीवन रक्षा के प्रति उनके साहस और समर्पण के लिए उन्हें याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को कई सार्थक प्रतीकों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है जो अग्निशामकों के साहस, समर्पण और बलिदान को दर्शाते हैं। सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक लाल और नीले रंग का रिबन और साउंड ऑफ है। श्रोताओं, लाल और नीले रंग का अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस रिबन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का प्रतीक है। लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग जल का प्रतीक है। श्रोताओं, इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में फिर से समय हुआ है अंतराल का, आप बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने बात की कि आज है एक और खास दिवस, हमने बात की लेकिन बात करेंगे कि आज एक और खास दिवस है, कोयला खनिक दिवस, और ये दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है, इसके बारे में भी कार्यक्रम में हम बात करेंगे। फिलहाल सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत और उसके बाद बातचीत और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हमने बात की आज 4 मई को जो खास दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, और उसके साथ साथ ही कोयला खनिक दिवस भी आज के दिन जो है श्रोताओं वो मनाया जाता है। और ये दिन भी 4 मई को मनाया जाता है, और इस बार आज यानी 4 मई सोमवार के दिन ये दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कोयला खनिकों द्वारा किए जाने वाले उनके कठिन परिश्रम, उनके बलिदान और समाज व अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य है खनिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खतरनाक परिस्थितियों में उनके काम की सराहना करना। भारत में व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पश्चिमी बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र से की गई थी श्रोताओं। और भारत में कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियां जैसे NCL, WCL अक्सर 1 मई को मजदूर दिवस के आसपास खनिक अभिनंदन दिवस भी मनाती है, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले खनिकों को सम्मानित किया जाता है। तो श्रोताओं, ये था आज के दिन के बारे में, यानी राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस के बारे में जानकारी। और इसके बारे में जानकारी और भी साझा करेंगे श्रोताओं आपके साथ। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है फिर से आपको एक और प्यारा सा गीत सुनाने का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में इस समय हम बात कर रहे हैं श्रोताओं कोयला खनिक दिवस के बारे में। ये दिवस आज के दिन यानी 4 मई को मनाया जाता है और भारत में इसकी शुरुआत कोयला खनन का एक लंबा इतिहास है, लगभग 220 साल पुराना। और 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और स्वेटोनियस ग्रांट हिटली द्वारा पश्चिमी बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र से की गई थी। 1970 के दशक में भारत ने निजी कोयला खादानों का राष्ट्रीयकरण किया और 1 मई 1972 कोकिंग कोल खादानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 मई 1973 गैर कोकिंग कोल खादानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2017 में 4 मई को राष्ट्रीय कोयला

संवैधानिक दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया। और श्रोताओं, योग कोयला आज भी भारत की आधी से अधिक वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। ये बिजली उत्पादन स्टील और सीमेंट उद्योगों के लिए अनिवार्य है। खनिक अक्सर खतरनाक सुरंगों में अत्यधिक गर्मी और धूल के बीच काम करते हैं और ये दिन उनके साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए ही है। ये दिन खनिकों के स्वास्थ्य जैसे कि खासकर फेफड़ों की बीमारियां, सुरक्षा मानकों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक मंच है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और ये बात की हमने कोयला खदानों के और जो कोयले के खदानों में काम करने वाले हमारे मजदूर, हमारे खनिक हैं, उनके लिए आज का दिन जो है वो खासकर मनाया जाता है। श्रोताओं, इसके साथ साथ एक और बात मुझे याद आ रही है। हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती हैं, हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, मजबूर हो गए हैं, ज़िंदगी रुक सी गई है, कुछ हो नहीं सकता। बातचीत कर रही थी और उसी बातचीत के दौरान एक लड़की जो कि हमारे कांगड़ा से ही है, उम्र 18-20 साल होगी, और ये बात मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ श्रोताओं, क्योंकि ना तो मुझे उसकी पब्लिसिटी करने का कोई कह सकते हैं शौक है, लेकिन ये बात उस लड़की के माध्यम से आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल दौर भी आता है और हम हार मान लेते हैं, उस समय हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और ज़िंदगी आगे का रास्ता जो है वो हमें दिखाती है, बशर्ते हमें उस पर चलना आना चाहिए। और जिस लड़की का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, उसका नाम नहीं बता सकती हूँ श्रोताओं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से आप प्रेरणा लें, हमारे लिए यही बहुत है। 18-20 साल की लड़की जिसका एक हाथ नहीं है और माता भी घर में कुछ ना कुछ काम करके भरण पोषण करती है, और वो लड़की एक हाथ से ही कलीरे बनाती है, बहुत ही सुंदर। और कलीरे जो कि हमारे ना सिर्फ हिमाचली शादियों में बल्कि भारतवर्ष की जितनी भी शादियां हैं उन सब में दुल्हन के श्रृंगार का एक अलग ही जो है प्रतीक माना जाता है। और वो लड़की एक हाथ से, मैं कल्पना कर रही थी कि एक हाथ से किस तरह से वो गरी का गोला पकड़ती होगी, किस तरह से लड़ियां बनाती होगी और किस तरह से वो सुंदर सुंदर कलीरे बना करके उन्हें सुंदर सा रूप देती होगी, उसकी कल्पना शक्ति को हमारा सलाम है। और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलीरे वो बनाती है, शायद इंस्टाग्राम में भी उसकी स्टोरीज वगैरह कभी आपको देखने को मिल जाएं, तो बहुत ही सुंदर और बहुत दूर दूर से लोग उससे कलीरे खरीदने के लिए आते हैं। सिर्फ एक हाथ की मालकिन है वो, और उसके बावजूद उसने पूरे जज्बे के साथ और शिद्दत के साथ इस काम को जो है वो जारी रखा है, और कई सारी दुल्हनों के चेहरों पे मुस्कान आती है उसके सुंदर सुंदर कलीरे देख के। दुल्हनों की सहेलियाँ, उनके पेरेंट्स जो भी कलीरे खरीदते हैं और दुल्हन को बांधते हैं, वो सब हंसते मुस्कुराते हुए उसके कलीरे जो है वो लेते हैं। तो श्रोताओं, ये संदेश आप तक पहुँचाने का यही मकसद है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो, लेकिन ज़िंदगी में जिस भी परिस्थिति में आप स्टक हैं तो यूं ही हार मत मानिए, कुछ ना कुछ रास्ता ऊपर वाला ज़रूर दिखाता है, बस उस रास्ते को खुली आंखों के साथ देखिए और हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, जो भी आप में कला है, टैलेंट है, उसको करने के लिए आप डट जाइए। ज़िंदगी अक्सर मौका देती है और आपकी जीत जो है वो तय होती है। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, और आज हमारा साथ अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ जो हमारा साथ था उसके साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला का सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमें अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन श्रोताओ वक्त का काम है गुजरना, और वक्त यूं ही गुजरता रहता है, हमें वक्त को संभालना आना चाहिए, वक्त का सही समय पर सदुपयोग करना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में हमने सदुपयोग किया ही है, आप लोगों के साथ बातचीत भी की और प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनवाए। तो श्रोताओं अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रही हूँ इसी वादे के साथ कि दोबारा फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रेप

0: फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना।
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
3: लुक लेट दिस, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
0: ले बेटा,
4: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम

0: कितने सारे ताले लगाते हैं?
1: मकान पर, दुकान पर,
0: तिजोरी पे दो चाबी वाला ताला,
2: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
1: फोन पे बटन वाला।
0: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
1: अगर फोन पर कोई आपसे आपका एटीएम पिन मांगे
2: तो लगा लो ताला,
1: और अगर कोई आपसे आपका सीवीवी मांगे
0: तब,
1: और अगर कोई ओटीपी मांगे
2: बरोबर
1: लगाइए
0: मुंह पे ताला।
2: याद रखिए,
0: आपका बैंक कभी आपसे आपका एटीएम पिन,
1: सीवीवी और ओटीपी जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
2: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
0: तो लगाओ मुंह पे ताला।
3: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू, कुछ भी कहो मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
4: ठीक तो है,
3: का ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
4: कह तो सही रही है निहारिका तो।
5: मम्मी
3: क्या है?
4: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
3: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
4: झूठ बोलती है।
3: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है, झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी,
2: जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तुम। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
3: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
0: ले बेटा
4: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गए। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
6: मकान पर, दुकान पर,
7: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
5: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
6: फोन पे बटन वाला,
7: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
6: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
5: तो लगा लो ताला,
6: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
7: तब,
6: और अगर कोई OTP मांगे,
5: बरोबर
6: लगाइए
7: मुंह पे ताला।
5: याद रखिए,
7: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
6: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
5: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
7: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है,
8: ठीक है ना, चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: कह तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
9: झूठ बोलती है।
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है।
10: झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी।
8: मजा आ गया। आहा,

0: इस राउंड में है, यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे है 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
1: धन्यवाद धन्यवाद राकेश
0: जी।
1: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
5: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
6: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
5: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
6: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने तन की।

291.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG,
2: जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल।

नगरोटा वगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड। जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: बहन जी ब्लड टेस्ट तो कर लो।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
5: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
4: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
5: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तुहां सारिआं दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमे शशि बिल्कुल तुहां तक हाजिर होई ओ कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशतो माटी दी महक कार्यक्रम दी शुरुआत अहां करीती है अपनी गलबात करने कने तुहां भी सारी मेरी गलबात करने जरूर जुड़ी चुके होने न या जुड़ा दे होने न इंतजार जेड़ा इंतजार दिया घड़ियां ना से बिल्कुल तुहां वास्ते खत्म होनिया न इंतजार तुहां जो लग्या होंदा कि कालू दिया 2 बजदे न कने कालू दिया हाँ माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न ता श्रोताओं ये सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक ता तुहां

ताशरो तो इंतजार कुसा गल्ला दे, जल्दी जल्दी कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। नंबर तुह तक दिन दिन पहुंचाई, क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल जड़े से करी सकते। कॉल करने वास्ते नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। शुरुआत अहाँ करनी है अपने कार्यक्रम दी एक प्यारे दे गीत करने, क्योंकि जल गीत संगीत अहाँ दी गलबात करने जुड़ी आते हैं तो कार्यक्रम का जिहड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। तो इस सफ़र जो सुहाना बनाना है इस गीत करने तो हाँ सारे भी इस गीत जो कने इस शुरुआत जो ज़रूर इंजॉय करा। पर फिर थे एक बारी जड़ा नंबर है से तुह तक कहाँ पहुँचाई देना, क्योंकि नंबर तुह तक पुजे होगा ताई तो हाँ इस नंबर पर कॉल कर सकते या टेक्स्ट मैसेज कर सकते। नंबर है 701-811-7091। तो फिर थे मैं स्टूडियो का जड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाई ते है कने तुहदा जड़ा काम है सेवे कॉल करना। तो जल्दी जल्दी कॉल करा कने अहां कने जुड़ा चलदे न कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न कने कर दे न अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कने।

0: दर्शकों कैसा लगा गोरिए पहाड़ों का वसना ये गीत तुहां सारे सुनिया कुती ना कुती ये गीत अपनी जेड़ा सादगी है से जरूर झलका दे क्योंकि पहाड़ों का बसना बड़ा प्यारा है कने पहाड़ों का जेड़ा रहन सहन है से बड़ा ही प्यारा है। अगर अहां अपनी गल करिए कुती ना कुती इतों का बोल चाल या अहां दी जेड़ा संस्कृति है या अहां दे जेड़ा हिमाचली लोक गीत हैं से अहां जो आपू कन्ने जोड़ी कर रखते हैं या अपनी संस्कृति कन्ने जोड़ी कर रखते हैं संस्कृति का महत्व इन गीतों च जरूर जेड़ा से झलकद चाहे से मेले न चाहे से शादियां न चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं तिना चाह इन गीतों के थ्रू ही कुछ ना कुछ जेड़ा से समझी पाते हैं। कने इस गीत की जेड़ा धुंद है सभी बड़ी प्यारी है कने हर कोई जालू गाना लिखता है या गाना गाता है तो कुछ सोच विचार जेड़े से जरूर करता है। कने कैसा लगा गोरिए पहाड़ों का बसना ये गीत भी बड़ा प्यारा है कने जालू हाँ अपने धौलाधार दे पहाड़ जेड़ा तिना जो दिखते हैं तो कुती ना कुती से अहां जो अपनी तरफ मनमोहित जेड़े से जरूर करते हैं। कने मन करता कि जेड़ा धौलाधार दे पहाड़ हैं तिना जो हाँ हमेशा दिखते ही रहन क्योंकि इन्हां दी जेड़ा सुंदरता है से बड़ी प्यारी है। कने मौसम दी यहाँ गल करिए तो मौसम भी कुथी ना कुथी अपनी जेड़ा करवट है से बदलता रहिंदा है तो पहाड़ा पर फिर ते बर्फ जेड़ा है से थोड़ी थोड़ी पई हो कने बर्फ दे जेड़ा नज़ारे न से हर कुसी जो खूबसूरत जेड़ा है से लगते न तो तुहां सारे भी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो श्रोताओं कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अज कने दिने दी यहां गल करिए तो अज सोमवार है 4 मई 2026 का ये दिन तुहां जेड़ा है से हल्की ठंड कन्ने जरूर इंजॉय करा देने कन्ने पहले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देने गल बात। हेलो
1: हाँ जी मैम।
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैम
0: जी। स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी
0: जी। तुहां कुत्थु ते बोला दे कन्ने तुहांदा नाम की है जी?
1: मैम असां बोला दे सोलन डिस्ट्रिक्ट ते
0: जी। तो आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए जी?
1: मैम असां पसंद करिए जी करनैल राणे दा गीत पटना दे तारुआ।
0: जी पटना दे तारुआ जी, जी जरूर तुहांदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: हां जी
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता मौसम दी ओर जेड़ा हाँ अपनी नज़र लगा दे थे यानी कि जेड़ा मौसम है अज कने दिने दा मौसम थोड़ा हल्का ठंडा कने बारिश वाला है रहने वाला है तो फिर तुहां मौसम दी ओर बार बार नज़र लगा दे होने तो मौसम कुथी ना कुथी अपनी करवट जेड़ा है से जरूर बदला दे। तापमान दी यहाँ गल करिए तो लगभग 12 डिग्री जेड़ा सेल्सियस है से है कने अधिकतम तापमान 13 डिग्री है कने न्यूनतम जेड़ा है से 7 डिग्री तक रहने वाला जेड़ा अनुमान है से जताया जा रहा है। तो श्रोताओं बारिश का जेड़ा बारिश होने की संभावना जेड़ा है से यहाँ ये जता दें कि 35% से 60% के बीच जेड़ा है से बारिश होने की संभावना जेड़ा है से जरूर जता दें। दर्शकों तुहां सारे भी मौसम के अनुसार ही अपने जेड़ा काम कार हैं से करन कने थोड़ा दे अगर अहां किसानां दी ओर अपनी थोड़ी नज़र या गलबात करन तो तिना दे चेहरे दी जेड़ा स्माइल है से कुथी ना कुथी फीकी जेड़ा है से दिखने जो मिला दी है क्योंकि किसानां वास्ते जालू अहां दा काम पूरा नहीं होंदा अगर अहां कोई भी काम कर देन तो अगर अहां दी मेहनत पर पानी फिरियां तो थोड़ा दिया बुरा तो लगता है ना। तो मौसम भी जेड़ा अपनी करवट बदला दा कने किसाना दे चेहरे पर उदासी जेड़ा है से जरूर अहां जो दिखने जो मिला दी। तशोदाओ फिर त्यहाँ आगे बढ़ना है, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचानी है, क्योंकि एक कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है, तस्मे इसमें अनुसार जेड़ा तो होंदिया फरमाइशा न सभी तुह तक पहुँचानिया न, कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते। चलते न सुनते न अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना, तुह सारी इंजॉय करा।

पार्टी दी मेह कार्यक्रम तोहां सारे ही सुना दे ना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तने तोहां सारे ही सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत दी फरमाइश आहां जो आई हुए धर्मशाला ते कने तीना दा ना वे वंदना जी। वंदना जी तक आहां ए गीत पहुँचाया कने तोहां सारिया भी इंजॉय कीता। फिर ते आहां अपनी जिहड़ा गलबात है तिहा पर वापिस जिहड़ा इस जरूर आई आंदे न। दर्शो तो हर कुसी दे सोच विचार जिहड़ा से अपनी अपनी होंदे क्योंकि हर कुसी दा सोच विचार कने दिखने दा जिहड़ा नज़रिया है ना से बिल्कुल अलग है। कई बार होंदा ना कि अहां परिवार दी गल जिहड़े से हमेशा करदे रहिंदे न, चाहे से अहां दे रिश्ते न, चाहे से अहां दा परिवार है, चाहे कोई भी। दर्शो तो पैसे दी अहां गल करिए तो अहां हमेशा यही सोची के चलदे न कि अहां ल पैसा है तहल सब कुछ है, पर जिंदगी च मेरे आइडिए ने पैसा भी अहाँ वास्ते ज़रूरी है, पर अगर अहाँ पैसे जो ज़्यादा अहमियत दें ना कने अहाँ हमेशा ये सोची करी चल दी ना कि पैसा अहल है तहल सब कुछ है। ठीक है, पैसा तुहल है सब कुछ है, पर तुहां पैसिया ने अपना परिवार या अपने जिहड़ा रिश्ते न सेता नहीं खरीदी सकते ना, क्योंकि सेता सिर्फ अहां जो प्यार भावना अपनापन जिहड़े से अहां दे जिहड़ा शब्द हन तिना पर निर्भर करदा है कि अहां किस प्रकार अपने शब्द कने अपनी प्यार भावना जिहड़े से रखदे न। हर जगह पैसा जिहड़े से

कम नहीं होता। अगर कोई इंसान है, तुझे ज़रूरत है, अगर तू हाँ तुझे थोड़ा दिया सहारा भी देन देना, सभी बड़ी बड़ी गाल है। क्योंकि हाँ अगर ये सोची करी चल देना कि पैसा हमेशा हमारी ज़िंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, चलो पैसा भी ज़रूरी है, चाहे यहाँ बीमार हों देना या कोई ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार पैसा भी यहाँ दा साथ जड़े से ज़रूर दिंदा है। पर पैसे ने यहाँ अपनी जड़ा प्यार भावना है या अपने जड़ा रिश्ते न तीना जोता नहीं पाई सकते ना, अहाँ तीना जोता नहीं खरीदी सकते ना। हर इंसान नहीं चाहते कि यहाँ प्यार भावना एक ही दूसरे अंदर रखन, पर आज के दौर की यहाँ गल करिए तो से चीज़ यहाँ जो कुछ ही ना कुछ ही दिखने जो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। चाहे माँ का प्यार है, अगर हाँ माँ दे प्यार दी गल करिए तो कुछ ही ना कुछ ही से अपने बच्चे वास्ते अपनी जड़ा जिंदगी है से हमेशा कदमच रख दी है। उस जो कोई तकलीफ ना हो, माँ हमेशा उसका जड़ा साथ है से दिंदी है। तो हर चीज़ ज़रूरी होंगी। पिता दी यहाँ गल करिए तो पिता भी अपने बच्चों जो हमेशा अच्छी परवरिश अच्छे जड़ा संस्कार हैं से ज़रूर दिंदे न, पर बच्चे ये सोच विचार करते हैं ना कि नहीं करते ना, तो हम भी थोड़ा दिया सोचा कि यहाँ दे पेरेंट्स अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा मेहनत करा देन या यहाँ दी जेड़ा परवरिश है से किस प्रकार करा देन, तो थोड़ा दिया सोच विचार तो करना बनता है ना। तो हाँ तल दिख सोचा कि नहीं, यहाँ अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचा देने, क्योंकि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तो अपनी गलबात करने यहाँ फरमाइशा भी पूरियां करनियाँ ना, तो चल देना सुन देना अगली फरमाइश, तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

0: આહમુલા દીન રેડિયો ગુંજન ધરમશાલા તે કને તોહા સારે સુન્યા એ પ્યારા દેયા ગીત પ્યારી દેઈ ફરમાઈશ ઇસ ગીતી ફરમાઈશ આહં જો આયુ વે સોલન તે કને તીના તક આહાં એ ગીત પહોંચાયા કને તોહા સાર્યા ભી એન્જોય કીતા તા શ્રોતાઓ ફરી તી આહાં આપની જેડા ગલબાત હૈ સે લેકર તોહાં તક હાજીર હોઈ હું ને કને તોહાં સારે ભી ઇસ કાર્યક્રમ દે સફર કરને જુડી હોણે ન तो हाँ सारे जो ये एक बारी फ्री ते शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो श्रोताओ हाँ जरा गलबात करा देन से करा देना कि पैसा ही यहाँ वास्ते जरूरी नहीं है, पर अपने दा प्यार होना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। पर आज के दौर दी यहाँ गल करिए तो हर कोई ये सोची करिए चलता है कि पैसा ही यहाँ की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो श्रोताओ चलो पैसा भी अहाँ समझ देने कि अपनी जगह जरूरी है, पर अपने दा साथ अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है से तो हाँ सारे जो ही पता है। अगले जरा श्रोता न कर देन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: आफ्टरनून मैम
0: जी। नमस्ते जी।
1: नमस्ते नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न? जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तो हम कुछ ते बोला दे कने तो हम दा ना किये जी।
1: मैं जी चंडीगढ़ ते बोला जी। नाम मेरा अमन शर्मा है जी।
0: जी चंडीगढ़ ते बोला दे अमन जी। अमन जी क्या हाल चाल है चंडीगढ़ आले अंदे?
1: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी। क्या काम काल लगाया तो हाँ क्या करा दे?
1: मैं फ्री बस यही गाना सुनने का दिल कर रहा हूँ।
0: जी कुंडिया गीत सुनना पसंद कर गए जी तो हाँ
1: जी। ओ सुना था बब्बा वर्क में आते बब्बे का गाना
0: जी। कुंडिया
1: बब्बा वर्क में आते उड़ गया मोर बन के।
0: जी जरूर तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो हंदा ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो श्रोताओ फिर ते थोड़ा दिया अगे बढ़ना तो बंद है, पर अपनी जड़ा गल बात है सभी तो तक पहुंचानी है कने अगले जड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने भी कर देन गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: ठीक ठाक बढ़िया। और तू सुना तो ठीक है ना?
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी।
2: मौसम के करा लाए
0: मौसम तो हां
2: दसा के लगाई थी शाल लाए थे कंबल ओढ़ी है सोई है ठंड लग गई वही भी ना लग गया।
0: जी जी मौसम अपना रंग रूप जेड़े से थोड़ा दिया बदला दा ना जी।
2: हां जी हां जी हां जी सभी जी का इस महीने तो बड़ा ठंड लग गई है कंबल ओढ़ी के सुते।
0: जी मई दा महीना चलया कने मौसम
2: बोल रही हां ये ना मौसम में दिक्कत हुआ ना।
0: जी जी जी ता रीना जी आज हां तुहा अगर कार्यक्रम शुरू ते सुना दे ओणे ता तो तुहा
2: नहीं मैं तो बस सुने किता ले जे रहा हूं बस गॉड पहले भी समझे जी।
0: जी जी अच्छा अच्छा तुहा काम कार करा दे ओणे ना जी।
2: हां जी हां जी बरखा लगी है ठीक ता कोई भी अंदर सोई जी लगी थी ऐसा हूं ये कंबल एक सुत्ती मैं लो टाइम तो मैंने बड़ा हो गया।
0: जी जी लगाया जी अच्छा टाइम दी और नजर नहीं गया तो हंदा ना जी।
2: हां जी हां जी हां जी
0: जी ता आज यहां गल करा दी ना कि हर कोई ये सोचता है कि यहां पैसा है तो सब कुछ है, पर तो ही क्या लगदा
2: नहीं सच्ची जी आज जरा पैसा नहीं काम होंदा के जित आदमी चाहे वे तो बंदा ही चाहिदा ना जे तू जे जिसदा काम है जे चाहिए कर रहा पैसा तब जे पैसा भी चाहिदा पैसे ही जगह पैसा भी चाहिदा।
0: जी जी
2: पर जित जो बंदा लगना तो जो कोई आदमी है करने काम में तो आदमी चाहिए ना ये जना
0: जी
2: जो पैसा नहीं है मैं तो रखना।
0: जी पर आज कने दौर दी यहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ ये चीज यहाँ जो सुनने जो भी मिलती है कने यहाँ अपने आंखों देखी कहानियां भी कुछ ना कुछ सुन दे ना जी ये चीज।
2: हाँ जी हाँ जी ये तो है
0: जी। तो हर जगह हाँ ये नहीं बोली सकते कि यहाँ वास्ते पैसा ज्यादा मायने रखे क्योंकि अपने दा परिवार हाँ अगर माता पिता दी गल कर दे ना तो हाँ माता पिता अपने पैसे ने तो नहीं खरीदी सकते ना
2: नहीं खरीदी सकते नहीं नहीं नहीं
0: तीना दा प्यार हाँ जो थोड़ी ना मिलना ना जी
2: ना ना ना
0: तीना दा प्यार ता भगवान ते भी बड़ा ऊपर है ना जी।
2: जी जी अपने माँ प्यो की सेवा कर ले ना बेशक से कुछ ही मत जा तीर्थ यात्रा मत कर कोई इनके पूजा पाठ मत कर माँ प्यो की सेवा कर ले तो सबसे बड़ी सेवा तो है ना।
0: जी पर अहाँ ज्यादातर पूजा पाठ कर दे कने माता पिता का मान सम्मान कुछ ना कुछ यहाँ है चीज जेड़ा ऐसे भूल दे चली आंदे ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: पर अहाँ ये नहीं सोचते जी
2: सेवा कर ली तो सारे सारे ला के गंगा नो ला फिर पहला
0: जी जी
2: सबसे बड़ी सेवा तो माँ बाप दी है
0: जी। तरीना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके भजन तो तक पहुंचाएंगे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो
2: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी थोड़ा भी
0: जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ।

0: कानवी दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर तो सारे कार्यक्रम सोना दिन माटी दी महक तो सारे ये गीत इंजॉय कीता। इस गीत की फरमाइश अह जो आई हुए व्हाट्सएप के थ्रू तिना दा ना वे अशोक जी कने से रहने वाले ने आगरा ते ताई फरमाइश अह जो व्हाट्सएप के थ्रू वहाँ तक पहुँची हुए कने अहाँ जरूर अशोक जी तक ये फरमाइश तिना दी पहुँचाई है कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना भी ये गीत जड़े से जरूर इंजॉय किया है। अगली जड़ा श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ चुके हैं न तिना कने भी कर देना गल बात। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुह दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी, बढ़िया
0: जी। क्या काम कार तुहां लगाया जी, क्या हाल चाल है चैतड़ वाले दे?
1: चैतड़ वाले दे हाल तो ठीक है, जेड़ा गाय लईया है, गाय लईया कन जेड़ा रही है रही है
0: जी। ता तुहां गाय लियो की अली? नहीं
1: गाय लई है जी।
0: जी ता तो ठीक है, कने बाकी अली ता लगभग कोने जी ता ज्यादा इनकी थोड़े बहुत ही है न?
1: कुछ माए ज्यादा भी है नहीं है
0: जी। जी वैसे तो अली शुरुआत ही हुई थी पर मौसम अपनी करवट बदली थी ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। ता इस बारी होया ना मौसम इन्हें एहसास हो दे कि ठंड वाला मौसम फिर ते वापिस आई है ना जी।
1: हाँ जी, चलो बड़ा चलो ठंड
0: से जी जी कोटियां फिर ते पहन आई थी ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। और नोई ताजी?
1: बस बढ़िया जी, मदद दिन हुई है मतलब फोन कर लें तो।
0: जी जी। तो मंगल जी आज हाँ जिड़ा गल बात करा दी ना से करा दी ना कि तुहें क्या लगता तुहें दे क्या विचार हैं कि अहाँ दे जीवन च चलो पैसा भी जरूरी है पर सब कुछ पैसे ने अहाँ पाई सकते अपने जिड़ा रिश्ते न फैमिली है, क्या तुहां विचार अपने रखना चाहेंगे?
1: पैसा तो एक जरूरी है पर पैसे पिछले कुछ

0: हूँ
1: जी
0: एक प्यार पागो है ना बंदे ना।
1: जी
0: सही है, प्यार
1: जी प्यार भाव
0: देता।
1: जी जी
0: हाँ जी बोला बोला। हाँ
1: जी प्यार भावना होना जरूरी है ना जी
0: जी प्यार
1: जी मतलब
0: देता जी के निकाल रहे लखा
1: जी पैसे तो हत्ते दा महल है ना जी
0: बीच मेरा नगर खखा बीच मेरा ना।
1: जी वक्त जेड़ा है
0: कोई
1: ना उसे बड़ा कुछ सिखाईंदा ना जी
0: हाँ जी, मेरा गरीब ही बनाएगा ना, गरीब अमीर बनाएगा।
1: जी वक्त के अनुसार अगर हाँ चल देना ता बड़ा कुछ हाँ जो सीखने जो भी मिलता है ना जी
0: यह चीजें पर था कमांड करना ही नहीं,
1: जी जी
0: क्या चीज बार भी नहीं करना ही था। हाँ
1: जी करना तो वैसे भी नहीं चाहिए पर सही है कि अपने जेड़ा हाँ जो रिश्ते न या हाँ दी फैमिली है उन्हें दा मान सम्मान जरूर कराना जी
0: जी
1: जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगे जी
0: गाना तो हाँ सुनाई दिया, काले कागा मिठा मिठा बोला जी मेरी मैया नौना वे। हाँ
1: जी काले कागा मिठा मिठा बोल आज मेरी मैया ने आना है ना जी
0: जी
1: जी ये गीत तुह तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
0: थैंक यू
1: जी ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला अगले जरा श्रोता है ना तिना कन्ने भी करी लेन देन गल बात क्योंकि इससे हाँ कन्ने कनेक्टन। हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी
0: सभी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
0: हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद।
1: जी तुहां कुत्थे ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी
0: दाड़ी के बोला दे मेघनाथ।
1: जी दाड़ी ते बोला दे मेघना जी मेघना जी क्या
0: हाँ
1: हाल चाल है तुहंदे कने तुहंदे ग्रां दे
0: हाल चाल भाली खराब रखा, कणक सिजी गई, वर्खा बड़ी भारी सिजी
1: जी अच्छा कणक बड़ी थी सिजी यही तो हंदी भी
0: गई सारी।
1: जी सारी सिजी गई अली जरा भी नहीं कटाई हो तो हाँ
0: ना थोड़ी गई है पढ़ने ना,
1: जी जी
0: कहना जेडी बड़ी जो है तो सिजी ना हो गया सकाना पौना
1: जी ताई इस काने वाला काम तो सबसे बुरा है ना जी
0: सबसे बुरा। कहना क्या पता चल भी मौसम कदिया
1: जी तो कल वैसे तो 7 तक मौसम खराब ही दस है ना जी
0: बस तो तीन दिन तक लुंगी जाना ना, क्या जी तुम मैं नहीं
1: जी जी
0: गई
1: जी जी चलो
0: मेरी
1: मौसम
0: तीन
1: दे
0: दिन तक
1: मौसम दे
0: लुंगी
1: अग्गे तो हाँ कुछ नहीं कर सकते ना जी
0: जाना।
1: जी जी तो मेघना जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
0: आज भजन सुनना, रामा ओ रामा सब रंगा च नाम,
1: जी रामा ओ रामा
0: सारे रंगा च नाम ही राम।
1: सारे रंगा च राम ही राम
0: हाँ जी
1: जी ए गीत ए भजन तो तक पहुँचा दे जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हंदा
0: बहुत बहुत धन्यवाद चौधरा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तो श्रोताओं चल देना अगली फरमाइश दी और सुन देने सा प्यारी दिया फरमाइशा जो

श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश आह जो आई हुए व्हाट्सएप के थ्रू कने तिना दा ना वे लक्की जी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। थोड़ा दिया और अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुँचाते न।

कलाधारी। श्रोतो तो सारे सुनिया ये प्यारा दया भजन प्यारी दे फरमाइश रीना जी दी फरमाइश हाँ तिना तक पहुँचाई कने से रहने आ रहे न खनियारा ते ता तो सारे ये भजन इंजॉय की ता फिर ते हाँ थोड़ा दे आगे बढ़ दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुँचा दे न अगली फरमाइश हाँ जो आई हो वह चंडीगढ़ ते कने तिना दा नाम है अखिल चौधरी जी कने अमन जी अमन शर्मा जी तिना तक भी ये गीत हाँ पहुँचा दे न तो सारे भी इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं तुम सारे ही सुनिया ये प्यारा दे आ भजन प्यारी दे फरमाइश समय दी जड़ा अगर अहाँ गल करते हैं तो समय जड़ा से अहाँ बड़ा थोड़ा दे है तो समय अनुसार अहाँ का भी फर्ज है कि जो तुम दिया प्यारिया प्यारिया फरमाइशा ने से जरूर तुम तक पहुँचानी है तो श्रोताओं अगली जड़ा फरमाइश है सभी तुम तक पहुँचाते हैं थोड़ी दी अगली जड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचाना है कने तो सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा।

परशुतों चरणदास जी की फरमाइश हाँ ये झमाकड़ा तिना तक पहुँचा देन कने तो हाँ सारे भी इंजॉय करा देन सराने वाले ने खनियारा ते कने तो हाँ सारे भी इस झमाकड़े जो जरूर जेड़ा इंजॉय करा देन कने थोड़ा दिया हाँ फ्री ते अगे बढ़ना है क्योंकि समय की जेड़ा कमी है से जरूर अहाँ जो महसूस हो दी है समय के अनुसार अहाँ जो जरूर चलना पौना है तो चल देन फ्री ते अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा देन। दर्शो तो कालिया कागा मीठा मीठा बोल ए भजन तुहां तक पहुंचा देन ए फरमाइश अहां जो आयु वे चैतड़ू ते कने तिना दा नाम वे मंगल जी तिना तक पहुंचा देन ए दो बोल तुहां।

श्रोताओ इसी भजन करने तो हाँ सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपनी बंदी।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7

नीट जेई सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: बहन जी ब्लड टेस्ट तो कर लो।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा

0: तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
1: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
0: क्या? मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
1: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
3: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
4: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
5: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
4: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
5: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसे भी ट्यून कर रहा और टाइम बच गया 4 बजे श्रोताओं और तुंदा सभी रे इंतज़ार, जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम रे इंतज़ार करते हैं दिल तो त्यारा इंतज़ार के सो खत्म हुआ और बिल्कुल श्रोताओं की गल मनने वाले कि इंतज़ार के सो मुंजो भी रहा सो भी रहा। चलिए कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच तुंदा सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में तो सब श्रोता सो अगे जुड़ सकते हैं जी, ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है और इस कार्यक्रम जो तो है सब ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो नहीं सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कड़िए भी कि ऐसा हो नहीं सकते हैं, देश में किसी भी कोने में क्या कि जिक्र ऐसा हो नहीं सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जिक्र जो इन एंड्रॉयड यूजर्स ने तिया गुंजन इंडिया रेडियो लिखना तो अपने इस कार्यक्रम जो अपने वेड़ी गुंजन जो तो है कड़िए भी कि ऐसा हो नहीं सकते हैं, है ना। बस नेट के सो बुने चाहता तुंदे मोबाइल डाटा के सो बुने चाहता तुंदे फोन अंदर और सभी श्रोता रहा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ। 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं। चलिए सब भी अवेले था धर्मशाला रहा मौसम की असो जान ही लेते हैं श्रोताओं कजो कि ये वाकई में यार असू भी ना समझ इच्छू करता हाँ कि मेरी अज 4 तरीक का क्या ना सुबह चुकी और है जैकेट ही ना खोलो कर देन है ना। तो इस समय हालांकि मौसम बड़ा ठंडा 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस समय धर्मशाला में और तू दसना चाहता कि यही अगर मेरी 4 तरीक का बंदी और दुप्पा बंदी जिस हिसाब होगी दुप्पा बुच्छू कर दी थी तो यही टेंपरेचर की असो 25 अबा बूना थो 25 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा ही बूना थो 25-28 दे बिच किया सो रहना थो तथो ज़्यादा ही बूना थो मतलब घटना बूना थो। तो समय जो धर्मशाला में जो मौसम आशो तो सो 13 डिग्री सेल्सियस तापमान हाँ जो अपने आप में ही थोड़ा करे असू हैरान करूँ करता अपने आप में ही असू थोड़ा करे किया सो परेशान करूँ करता कि परेशानी का सबब ये है ना श्रोताओं कि जो इनके किसान भाई ने तीनों बहुत किया सो नुकसान हुआ है और काफ़ी अत्यधिक किया सो नुकसान हुआ है किसान भाई इनके है ना। तो 13 डिग्री तो हगुआ टेम्परेचर कजो कि धूप लग पी है तो आई थिंक 14-15 रहे आसपास की सो बोने चाहिए टेम्परेचर एग्जैक्टली और ह्यूमिडिटी रे अगर हम गल करूँ श्रोताओं तो 55% की सो ह्यूमिडिटी हा जी बिल्कुल 55% की सो ह्यूमिडिटी हा इस समय धर्मशाला मंज। तो चलिए जी फिर आगाज़ कर लेते हैं कार्यक्रम रहा है ना। होप सो तो सब जुड़ रहे बुना।

अंजाम किया सो जरूर बंदा इंदी जिंदगी रे आगाज के सो पूछू रहा मैं अंजाम के सो अंजाम के सो भूना हा। पर बरहल अह कर दहिन इस प्यारे दे गीत होगे अपने इस प्यारे दे कार्यक्रम रा आगास अपने गादे कार्यक्रम रा आगास बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे।

0: FM ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভেরি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হেসা বিয়ে টিউন গুড রোর কার্যক্রম আর যে সচিন কাপুর সো কে বিলকুল লাইভ হুন কর দেন আপনে আপনে রেডিও সেট মা তা বহুত বহুত স্বাগত হে হার্দিক অভিনন্দন হাক মোকে ফিরে সবি হুনে আলে রা সবি শ্রোতাগণ রা তাই এই সাথে ওম কার্যক্রম যে থোড়ো করে ওর হাগু বড়ন দেহিন ওর কুছ এক খাস জানকারি হোগি দুসু রুবরু করবেন দেন সতম স্মার্ট সিটি ধর্মশালা রিহাইশি ইলাকে মা কে আসো নাড়া মন জি কে সতম সো বহুত সারা अवैध बहुत सारे अवैध कब्जे के न सोहिन और अवैध कब्जे अक गंभीर समस्या रा रूप किया सो लेव कर दे इन चौथों शहर रे कई क्षेत्र कई क्षेत्र मंच हेरू कर दे हिन कि नाले सोगी किया सो जो भी स्थाई घर इन सो अपनी अपनी जो कुल्ला जो पानी है किचन पानी या बाथरूम रा पानी है सो तिया नाले अंदर डे आई चुकर दे ना और इवन कि अब ये भी होने में आ कि मतलब थोड़ा करी कंक्रीट वगैरह कराई करी किया सो जल निकासी देखी आ तड़ी भी दिक्कत भुचु कर दे हाशो तो पूरी जानकारी तो हो गया है ज़रूर शेयर कर ले हाइये जी हिंद श्रोतागण असोगे कनेक्ट हो चुके हैं उस दिन कौन बल्लून दिन और कड़ी थोम बल्लून दिन नमस्ते जी
1: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: नमस्कार जी उत्तम चा ब्रह्मोर से बोल रहा हूँ
0: जी ब्रह्मोर में बल्लून दे ता गद्दी अंदर ही कनंद है ना
1: हाँ जी गद्दी कने कर दिल
0: हाँ जी हाँ जी तो है हिंदी को कने पहले
1: ना ये बालू ना
0: तेरा मतलब तो कर दे रहे रेडियो में फोन फान आना जी
1: हाँ जी कर दे ना
0: अच्छा ਬਰਮੋਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਬੱਲੂੰ ਦੇ ਜਨਾਬ
1: ਮਸੋੜੀ
0: ਕਸੋੜੀ ਜਗਾ
1: ਮਸੋੜੀ ਮਸੋੜੀ
0: ਅੱਛਾ ਮਸੋੜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਰਮੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਰਮੋਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਗਰਾ
1: ਅਸੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ
0: 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
1: ਪਿੱਛੇ ਆ
0: ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਮੋਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵਕਤ
1: ਠੰਡਾ ਵਾਕੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਨਾ
0: ਅੱਛਾ ਠੰਡਾ
1: ਹਾਂ ਕੋਟੀ ਹਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਨਾ
0: कोटी रे इस किनारी भी न खुली ने पतली कोटी लग रही है इस किनारी भी अबे उम्मीद है कि अबे मौसम की जो साफ रहता था धूप ही ना दिया है ना मुश्किल है
1: मुश्किल है इतनी साधन था ठंड बड़े बिची है
0: था ठंड भी था ऊपर फिर जो इंदे कणका लगुरी नहीं आ रहा सत्यनाश बच्चू कर दे ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो है क्या कणका कुणका गाय ली बड्डी ली
1: ऐसे ऐसे ना बंदे रख लूंगा है ना
0: चलिए ठंडा इलाके मा तो है रेव कर देन भोले शंकर जी भी नगरी मा तो है रेव कर देन इतो ज्यादा पुण्य और क्या कमाना तुसु जी तो क्या काम कर लूरो बंदा
1: बस लूरो में डाड़ धो लाना
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी
0: इस बारी इतनी गर्मी ना पियो कर दे अली चौर में ही बुझ गई
1: ना गर्मी होच नहीं करनी था
0: हां बरमोर कितना चले गंदा जी टेंपरेचर जी पता आइडिया कुछ
1: ना ना नहीं है आईडी दिन नहीं आईडी दे रखो ना
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी
0: चलिए ठीक है जी कुंदने की थोड़ा पसंद कर ले
1: आ सुना कनाल नाले दा कालगो मौजूदा
0: अच्छा
1: कनाल राणा
0: क्या बात है ठीक है जी कनाल राणा जी रहेगी तुस जरूर सुन ले है
1: थैंक यू जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून गुड रो रहा हूँ सचिन कपूर रतन अपना आज से रेडियो चौकी आइए तो कार्यक्रम जो होगा बढ़े दिन श्रोता अगले श्रोतागण हंस होगी कनेक्टेड हिंद और बिल्कुल पहली कॉल की है पहला जो कॉल छूरा श्रोता हूँ सो भरमोरा था छूरा है ना आइए इन अगले श्रोता जो कनेक्ट कर दें नमस्ते जी
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी रेडियो सेटर आवाज़ धीमी कर ही दिया जनाब ਐ ਤਾਂ ਖਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟ ਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੀ ਤੇ ਯਾਰ
2: ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਖਰੇ ਜੀ
0: ਬੜੀਆ ਜੀ ਬੜੀਆ ਤੋਏ ਬੱਲੇ ਤੋਏ ਠੀਕ ਨੇ
2: ਠੀਕ ਜੀ
0: ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਰਾ ਕਰੇ ਲੁਗਰੇਨ
2: ਬਸ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗੇਨ ਪਰ ਕਾ ਗਿਆ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਖਸੀ
0: ਅੱਛਾ
2: ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬਰਾਇ
0: ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜੀ ਕੁਣ ਬੱਲੂਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੜੀ ਥੋਂ ਬੱਲੂਨ ਦੇ
2: ਆਉਂ ਜੀ ਟਿੱਲੂ ਹੋਂਦਾ ਮਦਨ ਜੀ
0: ਅੱਛਾ ਟਿੱਲੂ ਥੋਂ
2: जी
0: मदन जी, बड़े महीने बाद ही फोन करूँ तो है।
2: ਨਾਲੀ ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ
0: ਅੱਛਾ
2: ਹੁਣ ਨਾਗਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਹ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
2: ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ।
0: ਔਰ ਮਦਨ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਣਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਪਏ ਤੇ ਚਿੱਕ ਚਿੱਕ ਨੂੰ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਕਣਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਜੀ
0: ਅੱਛਾ
2: ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਰੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆ
0: ਘਰੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੋ ਹੈ।
2: हाँ जी टाइमर भी गया है ना जी
0: हाँ ना
2: सवा 7 बजे रिंदे टांग पर तभी क्यों रिंदे किसा था।
0: ओहो
2: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ तो ये तो टाइम मरे पुजन जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: और मदन जी आस पड़ोस ठीक है?
2: सब सर जी सर दाए मारा कर नाक देते हुए
0: तो मौसम क्या बलदा चोर तरीका
2: बहुत ही
0: बची
2: बलदा तो पता चल रहा
0: दु अबे तो दुप्पा जिंदी ना
2: हाँ तो पगे जिंगे पचारे कान का गाय कान के पट इसे तैयार है ना हाल बुरा बजा रहा था
0: बहुत बुरा बहुत बुरा। अबे दुनिया पर डीरे खुरी तैयार रहा था और भी ज्यादा बुरा।
2: और यार
0: चलो
2: इधर खड़ी जो तो खड़ी इधर पट्टी फैम खराब खराब जा रहा है।
0: हाँ जो खड़ी इन सोता चलो फिर भी ठीक हो जाएगा ना
2: हाँ जी
0: दुनिया,
2: हाँ जी हाँ
0: पर जो ये बड्डी करी फेंकी तुरी ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है।
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो ना दाना काला फिर गंदा ना वो ना रहे गंदा
0: बिल्कुल
2: ए
0: बिल्कुल फिरे गंदा ना दाना के सुखाला फिरे गंदा बिल्कुल।
2: हाँ जी हाँ जी
0: और किसान वास्ते सुहागा के डाली बड़ी बड़ी
2: हाँ जी
0: अहमियत
2: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: रख
2: जी
0: दिया,
2: एकदम तो
0: बड़े अहम बंदे हैं। हाँ
2: बेचारे
0: जी हाँ जी
2: मनुष्य
0: तो कुंड ने की थोड़ा
2: अच्छा
0: पसंद कर ले जी।
2: उन्होंने नागर गीत ना फुलन तो नाल नहीं है
0: अच्छा
2: जी हाँ
0: चलिए ठीक है जी, तो ये गीत तो जरूर होने लगे है।
2: जी हाँ जी ठीक है जी
0: नमस्ते जी।
2: अच्छा ठीक है
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो। और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप गया नए सो चल रही हैं। ताइए जी कालुआ मजूरुआ गीतारी फरमाइशा इस फरमाइश है जरूर पूरा कर ले, लेकिन इन देखले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
3: हेलो सर नमस्कार सचिन जी नमस्कार जी
0: नमस्कार जी। नमस्कार
3: हाँ जी और ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी। आशीर्वाद है सियाने रा बबरा
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भगवान ने
0: आले रा
3: आशीर्वाद हाँ जी हाँ जी
0: जी।
3: हाँ
0: कौन
3: जी
0: बलुंदन और कड़ी था बलुंदन
3: आओ सर करतार थो करतार बलगुंदा टीलू थो सारे हाँ
0: करतार जी टिल्लू था बलुंदन।
3: जी हाँ जी
0: अच्छा, पहले भी फोन आसू ना जी।
3: ना अब आज ही करूं मैं बड़े दिनों बाद करो साथी जी फोन
0: ना
3: हाँ
0: ना ना
3: जी
0: मैं बोलो बड़े दिन बाद तो है करो फोन पर है, पहले भी तुम इलाके था वहां फोन ना।
3: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ मदन जी कर कौन मदन जी हाँ
0: हाँ जी हाँ जी
3: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और
0: और
3: सर
0: बढ़िया जी बढ़िया, तुम्हारा आशीर्वाद है। टिल्लू वाले ठीक ना सब?
3: इल्लू आया सब बढ़िया जी राजी खुशी सब
0: करे करे लग रहे किनी किनी कणका बड्डी पाएगी खड़ी रख रही, क्या क्या है माहौल है। हाँ
3: ਸਰਕਾ ਸਾਰੇ ਜੀਏ ਦੇ ਬਚਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ
0: ਜੀ
3: ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਨਾ ਲਿਖ ਰਹਾ ਕਾ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜੀ
0: अच्छा
3: ਇਹ ਰਹਾ ਕਾ ਫਿਰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਬਰੂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਆ ਗਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਐ ਸੋ ਖੜੀ ਨਾ ਲਿਖ ਰ
0: ਜੀ ਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਮੁਸ਼ਕਿਲ
3: ਲਾਲ
0: ਤਾਂ
3: ਛਤਰੀ ਰੋਏ ਚ ਨਹੀਂ ਛੁੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਪਾਣਾ
0: ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ
3: ਚੋਰ ਦੋ ਪਗੇ ਪਤੂ ਦਾ ਲੋਕ ਲਗੇ ਬਣਨਾ ਮਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਜ ਗਏ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਜ ਗਏ ਅਵੇ ਨਾਗ ਛਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਭ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂ
0: हाँ ਠੰਡ ਪਾਈ ਸੀ
3: ਸਭ
0: ਪਰ
3: ਜੀ ਠੰਡ ਪਾਈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਨੋ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਰਹੇ ਇਨ ਸੋ ਦੋਈ ਪਹਿਲੂ ਬੁੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ।
3: ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਨਾ ਆਦਮੀ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਗ ਕੀ ਆ
0: ਥੋਰ ਨੇ
3: ਥੋੜ੍ਹਾ
0: ਥੋਰ
3: ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਫੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਬੜੇ ਬਰਸਾਤ ਲੁਕੀ ਗਈ
0: ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ
3: ਇਹ
0: ਇਹਦਾ
3: ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਜੀ ਆ ਸੋ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪਾ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ
0: ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕਰੇ
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਬਰਸਾਤ ਸਹਿ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਗੱਠ ਦਾ ਬੰਦ ਬੜਾ ਓ ਹੋ ਹੋ ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਪੈ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਗੈਰ ਪੱਖੇ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ
3: ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ
0: ਜੀ। ਜਨਾਬ ਕੁੰਦਣ ਗੀਤ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ
3: ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਕੁੜੀ ਖਰਚੀ
0: ओबेरिया भाड़े वो
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर पाल को करना ना प्रूव वाला है
0: अच्छा अच्छा
3: वो कितने खर्चे से आ रही
0: अच्छा क्या बात है ठीक है जी तो जरूर सुन ले तू सुए गीत
3: ठीक है सर ठीक है जी धन्यवाद
0: धन्यवाद नमस्ते
3: नमस्ते सर नमस्ते
0: FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर बिल्कुल लाइव सुन द वीडियो सेट में आइए जी धीरे धीरे फरमाइश दौर गया सो पूरा करते चलते हैं।

0: श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देना। और इस कार्यक्रम जो तुम सामने है श्रोतम भरमौरा थो बहुत प्यार के असो मुलदा हा इंदे धर्मशाला थो बहुत प्यार मुलदा हा पालमपुर थो गोपालपुर थो इंदे श्रोता सोगी जुड़ देने जम्मू कश्मीर थो इंदे श्रोतागन सो सोगी जुड़ दे हैं। तो सब तुम्हारा प्यार आशीर्वाद है श्रोतम बहरहाल इंदे अगले श्रोतागाना सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन बोल रहे और कड़ी थो बोल रहे जनाब?
1: भाई
0: ओए तो है भरमौरा थो हिन और फिलहाल तो है हबजू खन्यारे अंदर न।
1: हाँ जी हाँ जी आए ना।
0: क्या बात है खन्यारे कड़ी ने इस समय बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है जी जरूर होने ले दू सुई शांत गीत धन्यवाद जी। आइए श्रोतो इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड इन एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन री गूंज सोगी तो बन रो और अपना गादा कार्यक्रम हाँ इंदी अपनी गपा इस गादे कार्यक्रम में तो सभी जुड़ी सकते हैं जी अन्य श्रोता के अंश जुड़ कर दिन और बहुत सारे श्रोता तेरी आवाज़ किया सो आई थिंक हूँ भी करते हूँ ने 7 0 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करनो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्कार भाजी।

0: सर जी नमस्कार। क्या
1: भाई और राज मुंदा खा रहे हो इंदुलांग मंदिर।
0: बात है राजी कर लुगरेन।
1: बस भाई से पूरे धुप्पा दागा मौसम ठंडेरी ते तवे धुप्पा लगा सेका।
0: अच्छा
1: और जी क्या हाल चाल।
0: बहुत बढ़िया जी। तो है दसा तुंदे क्या हाल चाल। अच्छा
1: बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। गाना होना सुहाग
0: हाँ जी।
1: रामा करने दो गल्ला लाना रही हैं
0: रामा करने दो गल्ला।
1: लाना रही।
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले दी सोएगे। धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जनाब। चलिए शुरू चल दें और धीरे धीरे फरमाइश रहा दौर के सो भी पूरा करते चलते हैं। इन्ह फुला ना तोड़ मालने ये गीता री फरमाइश आई थी। इतों बाद ये फरमाइश वो पूरा कर देना और तत्थों बाद फिर ये शो तो लेकर चल दें। तू सब भी अगली अगली जानकारी रही और अगले श्रोता रही और ये अगले गीता रही और फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं रेडी गुंजन धर्मशाला मन छे प्यारे दे गीत तुंदे अपने रेडियो सेट में। माफ़ करा श्रोताओं गीत था गीता रे बोल थी या फुल्ला न तोड़ मालने अजय भरमोरी रहेगी था ता आइया अजय भरमोरी री आवाज़ में होने ज़्यादा मजा ही ना है ना।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो की होने कर दे नींदी अपनी गप्पा ता आइए श्रोता कार्यक्रम जो है आगो बढ़न दे ना और कार्यक्रम मंच तू सब भी अब है अक प्यारी दे स्टोरी किया सो जरूर होने देन।

ਸ਼ੋਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੇ ਰਹੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੋ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਤੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸੋ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸੇਰਾ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਔਰ ਕੁਛ ਸੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਥੀ ਕਿ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਤੀਰ ਕਿਆ ਸੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਗੰਦਾ ਤੂੰ ऐसे ही सेरी शिकारी री जिंदगी की ऐसा चल रही थी और सो हर रोज जंगल में शिकार करना की ऐसो गंदा थो शो तो और कोई ना कोई शिकार की ऐसो जरूर लेकर इंदा थो कसकी न कसकी मारी करी लेकर की ऐसो जरूर इंदा थो अगदा रखे हुआ शोतों की शिकारियों ही लगू कि अब मेरे मतलब आऊँ बुजुर्ग लग रहा बुना और मेरी उम्र लग रही बुना तो आऊँ ये करनो ये जो मुंजो ले टैलेंट आ ये टैलेंट की आ सो आऊँ अपने बच्चे भी देख रहे गनो हाँ और तीन ये वाकई में ये करूँ कि अपने बच्चे जो लिया जंगल में और तो टिप्स किया सो देना लगो कि फलानी चीज़ ही करी करनी है फलानी ही करी करनी है ये नज़र ही करे बुआ कानी ही करे बुआ सो सब टिप्स किया सो तस शिकारी रे बच्चे जो किया सो देना लगो शिकारी तथों बाद छो तो एवोज करो इंदे गंदे सोगी थी है ना कुछ कि तस्वीर ट्रेंड करो करता तो शिकारी अपने बच्चे जो और एट लास्ट क्या हुआ कि हल्की हल्की बरखा हुई जंगल में प्रकृति सौंदर्य है ना प्रकृति इतनी अच्छी खिल खिलाने लगी और अक्की हिरनी है किया सो हल्के ने बच्चे की मतलब हल्के ने बच्चा हिरनी व थोश हो तो और अली बिल्कुल हल्का ही थो मतलब और शिकारी जो सो सामने हो जो और इन्हीं बोलो हंसता शिकार बिल्कुल सामने और इन्हीं सो तीर के चलाओ तो सो शिकारी री माफ करा हिरनी री किया सो तहा हल्की नहीं बच्ची हो गया हिरनी री हल्की नहीं बच्ची हो गई सो तो सो मारी था और सो हल्की नहीं बच्चे की सो तड़प थो रूना लगे है ना और दर्द थो चिल्लाओ करते थे और तत्थों बाद क्या हुआ कि जी सो चिल्लाने लगी थी सारी माँ की सो तो सो चले आए माँ जी चले आए मोह की जड़ी खून निकलो करता तो सो खून किया सो मतलब चटना लाइपो की मतलब ये ठीक हो जाएगा अच्छा है ना वो ना बुआ और शिकारी जो इस भावना थो कोई मतलब नहीं थो इस प्यार थो कोई मतलब नहीं थो इस इमोशनल सीन थो कोई मतलब ना थो तिनिए फिर ही शिकार वास्ते किया सो तीर चलाओ और मोह पर भी मारी देता माँ भी तट्ठी किया सो घायल बच गए सिरे ये तो है हुनर रखा या फिर क्या सो जाने भी कड़ी भी छेड़ बंदे थे जाड़ी रही है कुछ भी छेड़ बंदे थे तो सो बिना ही रह गया सो तीर घमंदा थो अब की बार त्री मौके गया सो फिर भी छेड़ बोए और इनिया फिर भी बिना ही रह गया सो तीर घुमाओ चलाओ और तू दसना चाहता कि इस बार जानवर री रूने री आवाज़ ना आए इस बार ही किया सो बच्चे री रूने री आवाज़ की सो आई इंसान रे रूने री आवाज़ की सो आई चिल्लाने री आवाज़ की सो आई और ये काफ़ी ज़्यादा किया सो परेशान हुए गलत हो कि कौन ला क्या ला बिना सोचे समझे कि ऐसो झाड़ी मगंदा और हेरदा कि ऐसो बच्चा तो जो कि सेरा अपना तो और ये तस्यू घर छड़िया तो बिना बल्ले बिना कुछ मंगे पूछे और ये बच्चा सिरी पचों पचों किया इसी को तोपदा तोपदा यानी कि अपने पिता जो तोपदा तोपदा किया सो चलिया और इन्हीं है सीधा इसी को ही हालांकि इसी को न पता था कि ये मेरा पुत्र होना और फिर एट लास्ट क्या बंदा शो तो एट लास्ट फिर ये बंदा कि
सो मतलब बड़ा रहो, बड़ा तड़पो, बड़ा अपने कम्मा जस कम्मा कम्मा वे बड़ा फेमस तू सो तस कम्मा हो धिकार ना लगो। और ती थोड़ी देर बाद फिर छेड़ बुंदी और आकर टाइगर किया सो इंदा और शिकारी रा शिकार किया सो करी लिंदा हा और दोनों तथिए मरे गंदे। अच्छा तो छोटी जी स्टोरी है सो क्या सीख देखे गंदे है, सीख देखे गंदे है कि जे सैकड़ों गाय थो सैकड़ों गाय बोली ना और गाय रे जड़ा बछड़ा तसी है ये छड़ी ले ना कि हाँ तू गचता अपनी मौत हो तथा सैकड़ों गाय मंज के अपनी माँ तो पी लैनी अशो तो सेम इंदे कर्म हो गए भी हैं कि अह अगर कर्म अच्छे कर देन अह अगर कसकीरा भला कर देन ता अच्छू ठीक है ऐ ठीक ने और अगर ऐह खरे कर्म ना करो कर दे कसकी हो खरा ना करो कर दे अपने मन में कसकी रे प्रति मतलब ठीक ना सोचो कर देन हिंसा पालो कर देन और दूर किया सो अपने अच्छे कर्म थो गच्छू कर देन तो कर्मा बेटा ने सब भी हुन रो की कर्म किया सो लोटी करी जरूर इंदन वापस किया सो जरूर इंदन। सो शो तो अपने ये तो छोटी दे एग्जांपल थो स्टोरी रा लेकिन अपने कर्मा जो किया सो जरूर खरा करा कसी वे दिल मत दुखा मोटे हो अलफल ना बलना चिंता मोटे होगी प्यार भावना होगी वह नहीं चिंता इज्जत मान सम्मान देना चिंता हा और प्यार किए सो देना चिंता सियाने जो है ना। तो चलिए सर तो कार्यक्रम जो हगो बढ़ तो सब बन रहे समय आज सचिन कपूर सो की फरमाइश रहा दौर किया सो पूरा कर दिन कसो की फरमाइश है कहना सो काफ़ी ज़्यादा हिन क्या बल दिन तो लेकिन चल दिन तू सब भी हो चलना जी होप सो तू सब भी किया सो जरूर चलना हाँ। तो आइए जी हूँ दिन तू सब भी हो प्यारे दिया गीत बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगे और रेडियो गुंजन री इसी गूंज सोगे आई शो तो हुनंदे ने प्यारे दे गीत

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून गुरु और कार्यक्रम इन दी अपनी गप्पा कहने सो चल रही तर श्रोतों अब चल रही कहन समय बुझे गो तो सब भी तो अलविदा लेने रहा और गंदे गंदे वैसे बोलना चाहूँ हाँ कि माँ बाप इज्जत जरूर करा हमेशा करा रोज करा तीन थो मोटा कोई भी नहीं है तीन थो बड़ा कोई भी नहीं है तुह तिहारी इज्जत करी तो सब कुछ तुंदे अनुसार होना हाँ यह गल जो नोट करा और हर कैसे भी इज्जत करा मान सम्मान करा सियाने वह मान सम्मान करा शोधों कसी वह दिल किया सो बिल्कुल भी मत दुखा के इसकी इच्छा किया सो बिल्कुल भी मत मारा और कभी पूछ सका तो सो लगदा कर खगे आऊँ से भी हेल्प कर सकता तो सेरी हेल्प किया सो जरूर करा इन शब्द था आऊँ सचिन कपूर लनू तो सुधो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडी गुंजन मार जे सचिन कपूर छो यहीं हुन दे रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सेलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: छोटे आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव, टेस्ट।
2: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
3: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
4: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर आपके साथ हाजिर हूँ, आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ 8 बजे तक। जी हम यूं ही, आप यूं ही, हम सभी साथ साथ जो है वो ज़रूर रहेंगे, और कार्यक्रम में जो है वो ज़रूर कुछ एक नई जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, और साथ ही साथ गीत संगीत के साथ तो जैसा आप होते हैं रूबरू वैसे ही होते रहेंगे। तो आइए जी कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए, बहुत सारी जानकारियां हैं आप तक साझा करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। और बिल्कुल बताना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी

मिले, और उसके बाद उस वार्ड की समस्याओं पर जो है वो ज़रूर बातचीत हो, और बातचीत के साथ उस पर काम भी जो है वो होना बहुत अनिवार्य है। बिजली पानी, चाहे वो पेयजल की बात हो, बिजली पानी की बात हो, चाहे फिर वो सड़क सुरक्षा को लेकर बात हो, है ना, और भी कई बातें हैं आज जिन पर हम जो है वो आपके साथ ज़रूर हम जल्द से जल्द जो है वो बुलाएंगे और आप तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं आपके वार्ड के लिए। बहरहाल, मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट कर रहा हूँ। आइए जी, तो सबसे पहले आगाज़ में आपको पता है हम धर्मशाला का मौसम जो है वो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक जो है वो रहते हैं। इवन कि जो बाहर के हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इस चीज़ को ज़रूर उत्सुक रहते हैं सुनने के लिए कि धर्मशाला में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्मशाला में सुबह से ही मौसम जो है वो ख़राब था। सुबह से ही जो है वो बारिश भी, आई थिंक 11 बजे के आसपास जो है वो बारिश भी लगी थी कुछ एक टाइम के लिए। उसके बाद अभी की बात करूँ तो अभी धूप जो है वो धर्मशाला में खिली हुई है, और श्रोताओं इस समय जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है धर्मशाला का। और ह्यूमिडिटी की बात की जाए, यानी कि हवा में नमी की बात की जाए, तो 80% जो है वो ह्यूमिडिटी है। तो यह है इस समय की ताज़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है श्रोताओं। आइए जी, आप सभी को सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, श्रोताओं आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। और आप सभी की ज़िंदगी में भी जो है वो कोई ना कोई ज़रूर आया होगा बहार बन के, कोई ना कोई आपकी लाइफ में जो है वो ज़रूर आया होगा फूल बनकर। जी बिल्कुल, फूलों से मुझे आज का जो विचार है वो भी याद आ गया। कहते हैं अपने शब्दों में ताकत डालें, अपने शब्दों में ताकत डालें आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं बाढ़ से नहीं, है ना। अपने शब्दों में वो ताकत रखिए, आवाज़ ऊंची आवाज़ करके या ज़ोर से बोलकर किसी को डराने से वो कुछ नहीं होता है। बारिश में हमेशा जो है वो बारिश से ही जो है वो फूल उगते हैं, है ना, बाढ़ से नहीं। बाढ़ से तो तहस नहस होती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं। और ऐसा ही रिश्तों में है शोतों, कि अगर आपने अपने शब्दों में वो विनम्रता रखी है, अपने शब्दों में वो प्यार रखा है, वो मिठास रखी है, तो रिश्ता जो है वो और खिलखिला उठेगा। लेकिन अगर आपने बारिश की तरह किया तो सही है, लेकिन अगर आपने बाढ़ की तरह किया तो फिर रिश्ता जो है वो डगमगा उठेगा, रिश्ता जो है वो टूटते हुए नज़र आएगा। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं कि दिल कहता है कि चल उनसे मिल। मेरा बहुत ही पसंदीदा ये गीत है, रहा भी है, कि दिल कहता है कि उनसे मिल, फिर कदम अक्सर रुक जाते हैं, उठते ही कदम जो है वो रुक जाते हैं।

उठते ही कदम जो है वो रुक जाते हैं। जब दिल ने कहा कह दिया तो फिर रुकना क्यों, फिर तो चलते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे निकलते जाइए। चलिए श्रोताओ, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन और मैं सचिन कपूर हूँ। तो धीरे धीरे जानकारियों का पिटारा भी अब खुलता जाएगा श्रोताओ, जानकारियों के पिटारे के साथ गीत संगीत जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर। श्रोताओ, स्मार्ट सिटी धर्मशाला की रिहायशी इलाकों में नालों पर हो रहे अवैध कब्जे जो हैं, जो नालों पर हो रहे अवैध कब्जों पर एक गंभीर समस्या का रूप जो है वो लेते जा रहा है। सो तो ये जो कब्जे हो रहे हैं ना, ये वाकई में एक गंभीर समस्या का रूप जो है वो लेते जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, शहर के कई क्षेत्रों में देखा गया है कि नालों के पास स्थित घरों के निवासी अपनी थोड़ी ज़मीन बढ़ाने के उद्देश्य से नालों के ऊपर निर्माण कार्य कर रहे हैं और ऐसा धर्मशाला में बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जिससे मैं बताना चाहता हूँ प्राकृतिक जल प्रवाह वादित हो रहा है, जल प्रवाह जो है वो वादित हो रहा है। हैरानगी की बात तो ये है श्रोताओं कि ये सब दिन दिहाड़े जो है वो सड़कों पर हो रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय स्तर पर चल रहे ऐसे निर्माण कार्य न केवल नियमों की अनदेखी है बल्कि भविष्य में भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है। श्रोताओं, नालों के ऊपर डाली जा रही कंक्रीट संरचनाएँ जल निकासी को प्रभावित कर रही हैं, जिससे बारिश के दौरान जल का स्तर जो है वो और भी बढ़ सकता है और बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है श्रोताओं, और बढ़ गया है मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा धर्मशाला में पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे श्रोताओं कि पिछले कुछ वर्षों से जो है वो धर्मशाला में फ्लैश फ्लड की घटनाएं तथा उनके कारण होने वाले जान माल का नुकसान जो है वो भी उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं हो रही है और देखने को मिली है। नालों किनारे बसे लोगों द्वारा किए जा रहे इस अवैध निर्माण के कारण नालों की चौड़ाई दिन प्रतिदिन जो है वो कम हो रही है तथा किसी वर्ष मॉनसून के समय अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में जो है वो पानी को उचित निकासी नहीं मिल पाती तथा यही पानी आपदाओं का कारण जो है फिर बन जाता है श्रोताओं। इसके अलावा नालों को जो हम गंदा करते हैं जिससे वो गंदा पानी जमा होने लगता है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है श्रोताओं। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि निगम की चुप्पी ऐसे अवैध कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है। यदि समय रहते ये सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये वाकई में ही प्रकृति को तो हम ख़राब कर ही रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर समय रहते हमने यहाँ पर निगम ने कदम नहीं उठाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होने वाला है। अधिक लोग नालों पर कब्जा करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर निगम कोई भी मतलब आप सोच लो, अगर नगर निगम के जो ऑफिसर हैं वो अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो वाकई में ही इसमें बढ़ोतरी होगी। लोग सोचेंगे इन्होंने किया हम भी करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शहर से पानी की निकासी का कार्य करने वाले नाले छोटी छोटी नालियों का रूप जो है वो लेते नज़र आएंगे और लेते देखने को मिलेंगे आपको तथा बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं आम होती नज़र आएंगी। फिर तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। लेके चलते हैं आप सभी को अब इस प्यारे से गीत की ओर। आप सभी बने हुए हैं RJ सचिन कपूर के साथ गूंज अपने पन की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और 6:30 हो गए हैं श्रोतों इस समय। और अब वक्त हो गया है वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोतो अंतराल के बाद आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ एफएम बैंड 91.2 MHz पर। आइए लेकर चलते हैं आप सभी को अब जानकारी के अगले पिटारे की ओर, खोलते हैं पिटारा जानकारी का। श्रोतो, सभी लाइसेंस धारक जो है वो 7 मई तक जमा करवा दे हथियार। जी बिल्कुल श्रोतो, हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं, और भी ज़्यादा तेज़ जो है वो हो गई हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत सभी लाइसेंस धारक जो हैं वो अपने हथियार और गोला बारूद को अस्थायी रूप से जमा करवाना उनके लिए अनिवार्य है। ज़िला कांगड़ा के उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यानी कि ज़िला कांगड़ा के डीसी साहब हेमराज भैरवा जी के द्वारा जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उनके अनुसार, ज़िला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला बारूद जो है वो नज़दीकी पुलिस थाना या अधिकृत सरकारी शस्त्र डिपो में जमा करवाने होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस संबंध में पुलिस थाना गग्गल के थाना प्रभारी उधम सिंह ने क्षेत्र के सभी लाइसेंस धारकों से अपील करते हुए कहा है कि वह 7 मई तक अपने हथियार जमा करवा दें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों की अवहेलना की और अवहेलना करते कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आप सभी से हमारी भी गुजारिश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बखूबी कि हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती चुनाव हैं और चुनावों को लेकर सभी प्रतिनिधि जो है वो घर घर जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट जो है वो अपना दमखम लगा रहे हैं, सभी उम्मीदवार जो हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और उन्हीं तैयारियों के बीच में कुछ इस तरह के आदेश भी जो हैं वो हमारे डीसी साहब ने निकाले हैं, है ना जी। तो आप सभी से, जितने भी लाइसेंस धारक हैं, आप सभी से गुजारिश है 7 मई तक जो हैं वो अपने हथियार, गोला बारूद, बंदूक जमा करवा दें। कहते हैं हर कहानी जो है वो अधूरी ज़रूर रहती है, कभी मेरी कहानी तो कभी आपकी कहानी और कभी हमारी कहानी, हमारी ये अधूरी सी कहानी। श्रोताओं,

वाकई में इन शो तुम बहुत प्यारा सा ये गीत है और बहुत आनंद आता है इस गीत को सुनने के बाद। बड़ा सुकून सा जो है वो महसूस होता है, बड़ा प्यारा सा जो है वो लगता है। आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेली गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। तो श्रोताओं आइए, सभी लाइसेंस धारक जो है वो मैंने बताया कि 7 मई तक जमा करवा दे हथियार। एक बार फिर से गुजारिश करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है किसी एक श्रोता ने जो है वो अभी रेडियो को ट्यून किया हो, तो एक बार फिर से गुजारिश है, सभी लाइसेंस धारक जो है वो 7 मई तक जमा करवा सकते हैं अपने हथियार, है ना जी। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, कांगड़ा पुलिस ने जो है वो 9 नशा तस्करों के और 9 नशा तस्करों को जो है वो पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। और एसपी बोले, नशे के कारोबारियों पर कड़ी नज़र जो है वो रखी जाती है। जी बिल्कुल, पुलिस कप्तान कांगड़ा अशोक रतन ने बोला। एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि पुलिस जिला कांगड़ा नशे का कारोबार करने वालों पर नज़र गड़ाए हुए है तथा ऐसे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे जो है वो भेजा जा रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं। कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एक सप्ताह के भीतर 4 अलग-अलग मामलों में करीब 7 किलो चरस बरामद की गई है श्रोताओं। वहीं एक मामले में 130 ग्राम से अधिक चिट्टा भी बरामद किया है। पुलिस जिला कांगड़ा के तहत पुलिस थाना पंचरुखी लंबा गांव बैजनाथ एवं गग्गल में दर्ज मामले में नशा तस्करी में जो है वो 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है श्रोताओं। पहले मामले में पुलिस थाना पंचरुखी के तहत 27 अप्रैल को पुलिस की विशेष टीम द्वारा जो है वो गुप्त सूचना के आधार पर बनूरी पंचरुखी लिंक रोड पर एक अल्टो कार में सवार 2 आरोपियों को पकड़ा और उनसे जो है वो 4 किलो 40 ग्राम चरस बरामद की गई श्रोतों। इस मामले में कार में सवार 2 आरोपी थे श्रोतों। और आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि 18 घंटे के भीतर जो है वो 2 मुख्य तस्करों को जो है वो भी पकड़ा श्रोतों। जी बिल्कुल, और इसी तरह पुलिस टीम जो है वो काम करती रहेगी। पुलिस टीम जो है वो हिमाचल की पुलिस टीम जो है वो इसी तरह नशे के कारोबारियों को जो है वो अंदर डालेगी, सलाखों के अंदर जो है वो डालेगी। तो आप सभी से भी मेरी ये गुजारिश है, चाहे वो पार्षद है, चाहे एमएलए हैं, चाहे वो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, आम लोग हैं, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी भी अगर आपको कोई सूखा नशा करते दिख जाता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़का है लड़की है, तो आप तुरंत जो है वो पुलिस को बताएं। अन्यथा अगर आपने सोचा कि मेरा बच्चा नहीं है या मेरा पड़ोसी नहीं है या कुछ भी है, फिर आप अगर इस तरह से उन्हें छोड़ देंगे ये देख या फिर देख कर अनदेखा कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं फिर हमारे बच्चों पर जो है वो बात ज़रूर आएगी श्रोताओं। और इसी तरह जो है वो अब हिमाचल में भी चिट्टा तस्कर जो है वो इतने बढ़ गए हैं श्रोताओं, देखते ही देखते हर गली हर मोहल्ले में जो है वो आपको चिट्टा तस्कर मिल ही जाएंगे आज की तारीख में श्रोताओं। सो हम सभी को भी ये वादा करना है, हम सभी को भी इस चीज़ के लिए एकजुट होना है कि जो भी नशा करता दिख जाता है आपको, सूखा नशा, चिट्टा, भांग, अफीम, गांजा, चरस, एक जो भी व्यक्ति दिखता है उसे तुरंत पकड़ कर जो है वो पुलिस के हवाले करें। तो चलिए जी, कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और गीत संगीत यूं ही चलते रहेंगे श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा भी यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के स्को क्षेत्र का तीखा मोड़ इन दिनों जो है वो सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। श्रोताओं, शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित ये मोड़ जो है वो अब रेड जोन की तरह देखे जाने लगा है। श्रोताओं जी बिल्कुल श्रोताओं, जहां हर पल दुर्घटना की आशंका जो है वो बनी रहती है, मोड़ की मतलब इतनी अधिक वो मोड़ इतना तीखा है अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। वहीं तेज़ रफ्तार बाइकर्स इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ ना तो मजबूत पैरापिट हैं और ना ही साइड बैरियर, जिससे छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। बता दें कि स्को में चल रहे निर्माण कार्य ने हालत और बिगाड़ दिया है श्रोताओं, पहाड़ियों की कटाई के चलते पत्थर और मलवा गिरने का खतरा जो है वो बना रहता है, जो खासकर बारिश के दौरान कई गुना बढ़ जाता है। श्रोताओं, स्थानीय लोगों के अनुसार इस मोड़ पर पहले भी कई बार जो है वो वाहन अनियंत्रित हो चुके हैं, अनबैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इसके अलावा सिर्फ स्को ही नहीं बल्कि धर्मशाला का प्रसिद्ध सेल्फी पॉइंट, फेमस सेल्फी पॉइंट जो है वो भी कहीं ना कहीं, जिसे हम कैंची मोड़ के नाम से भी जो है वो जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लंबे समय से खतरे की आड़ में जो है वो खड़ा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ सुरक्षा दीवार पिछले साल नवंबर में टूटी हुई थी और अब तक उसकी मरम्मत जो है वो नहीं हो पाई है। अस्थाई बैरियर के सहारे जो है वो सैकड़ों वाहन जो है वो वहाँ से गुजर रहे हैं और हर दिन जोखिम जो है वो उठा रहे हैं। श्रोताओं, जबकि ये स्थान पर्यटक की पहली पसंद है और पहली पसंद में जो है मैं कहना चाहता हूँ शामिल है, इसी कड़ी में जवाहर नगर के पिंगल नाला स्थित कैंची मोड़ की स्थिति भी कुछ चिंताजनक बनी हुई है। श्रोताओं, हाल ही में कांगड़ा कार्निवल के दौरान यहाँ रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही से खतरा और बढ़ गया था। श्रोताओं, सुरक्षा वेलिंग ना होने के कारण स्थानीय लोगों ने जो है खुद ही सड़क किनारे पत्थर रखकर जो है वो अस्थाई उपाय करने पड़े। श्रोताओं, इसके अलावा नगरोटा धर्मशाला टी फैक्ट्री मार्ग सहित कई अन्य सड़कों पर भी जो है वो यही हाल जो है वो श्रोताओं मैं बताना चाहता हूँ देखने को मिल रहा है। कहीं पैरापिट नहीं है तो कहीं साइड बैरियर का अभाव है, जिससे ये रास्ते धीरे धीरे जो है वो ब्लैक स्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। श्रोताओं, और हादसे को खुला न्योता जो है वो दे रहे हैं। चलिए, जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं समय आरजे सचिन कपूर को। याद रखिए श्रोताओं, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं इस वक्त आरजे सचिन कपूर को, आपके अपने रेडियो सेट पर, आपके अपने रेडियो गुंजन पर। तो श्रोताओं, अब वक्त हो गया है समाचारों का। जी बिल्कुल, तो आइए कुछ ही देर में जो है वो आप सुनेंगे समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में, गूंज अपने मन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिल गावित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की AINRC ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा NDA की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने ट्यून किया इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो गुंजन को, और कार्यक्रम को होस्ट मैं यानी कि आपका अपना नाचीज सचिन कपूर कर रहा है। तो आइए जी, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं, और गीत संगीत का भी, तो लेकर चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। देखिए, हर वक्त सरकार या फिर हर वक्त प्रशासन को दोष देना जो है वो सही नहीं होता। कभी कभी हम भी लापरवाह होते हैं, कभी कभी हम भी जो हैं वो लापरवाह नागरिक बन जाते हैं श्रोतों। जी बिल्कुल, नगर निगम धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में स्थित चिन्मय तपोवन क्षेत्र इन दिनों कचरे की समस्या से जूझ रहा है। जी बिल्कुल श्रोताओं, सिद्धबाड़ी से कांगड़ा की ओर जाने वाले इस सुंदर व शांत वन मार्ग में शहर के लापरवाह नागरिकों द्वारा जगह जगह पर कचरा फैलाने के कारण ये मनमोहक मार्ग आजकल कचरे से जो है वो भरा पड़ा हुआ मिल रहा है। श्रोताओं, कनेड़ पंचायत से गुजरने वाले इस मार्ग पर जगह जगह जो है वो प्लास्टिक कचरा और प्लास्टिक की बोतलें, खाने पीने के पैकेट जो हैं और अन्य ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आप पूछिए मत, जिससे पूरा वन क्षेत्र जो है वो कूड़ा घर लग रहा है और कूड़े घर में जो है वो बदल चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर जो है वो आने जाने वाले लोग, खासकर आसपास के क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ये लापरवाही जो है वो की जा रही है। लापरवाही से उनके द्वारा जो है वो एक कचरा फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है श्रोताओं। और पर्यावरण को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, उसके साथ साथ श्रोताओं में बताना चाहता हूँ, क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों की का ये भी कहना है और ये भी शिकायत रहती है कि धर्मशाला व आसपास के क्षेत्र के युवा अक्सर गाड़ियों और मोटरसाइकिल में इस क्षेत्र में खाने पीने की वस्तुएं लेकर जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को

मतलब ठीक है जाइए, लेकिन उन्हें समेटिए, है ना, उन पैकेट को, उन बोतलों को जो है, प्लास्टिक की बोतलों को जो है उन्हें समेटिए, और उन गिलासों को जो है वो वहाँ ना फेंके, ना फेंके, जिससे हमारी इतना अच्छा, इतना शांत ये रोड है, इतना शांत ये वाकई में हर कुछ है। ये वाला रोड, तपोवन क्षेत्र वाला रोड जो है, सिद्धबाड़ी वाला, ये वाकई में बहुत शांत है। हम इन्वायरमेंट को दूषित करने में, देखिए आज अगर आप त्रिउंड की बात करें तो त्रिउंड में भी कुछ इसी तरह जो है वो देखने को मिल रहा है ना। अब मैंने देखा है कि हम लापरवाह हैं, हम लापरवाही करते हैं, जिस वजह से जो है वो प्राकृतिक को हम फिर उसे दूषित करते हैं, प्रकृति को हम दूषित करते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह की लापरवाही ना करें, प्रकृति को दोष ना दें, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारे साथ है। फिर कुछ होगा तो फिर हम दोष देंगे, है ना, लेकिन हम अपनी गलतियों पर जो है वो नज़र नहीं डालते हैं। ये भी तो हमारी गलती है ना कि इतने शांत स्वभाव वाले वन मार्ग को हम जो है वो प्लास्टिक से और कूड़े कचरे से जो है वो उसे बिल्कुल गंदा कर रहे हैं, है ना। ये भी तो हमारी ही गलतियाँ हैं। अगर समय रहते कोई अभी ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। इवन कि स्थानीय लोगों ने जो है, मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन से अपील भी की है, वन क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की है, ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग की स्थिति में सुधार हो सके और आने वाले समय में इस प्रकार की लापरवाही जो है, इस प्रकार की लापरवाही पर जो है वो अंकुश लगाया जाए। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, आइए इस प्यारे से गीत का आनंद जो है वो हम सभी भी लेंगे।

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, ना तुम जानो ना हम है ना जी। तो हाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और कार्यक्रम में अब वाकई में ना ये वाकई में ही बड़ी, मतलब आप खुद सोचिए कि अगर हम इस तरह से करेंगे, हम अपने ही इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे, अपने ही पर्यावरण को अगर हम ख़राब करेंगे, दूषित करेंगे श्रोताओं, और इस तरह से जगह जगह पर जो है वो कूड़ा कचरा फेंकेंगे, प्लास्टिक की चीज़ें फेंकेंगे, तो फिर हम ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, फ्लैश फ्लड क्यों आया, ये ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। गंदा गैर जिम्मेदाराना तो हम है ना, गैर जिम्मेदारी तो हम निभा रहे हैं। अगर हम जिम्मेदार पर्सन होते तो हम इस तरह से जो है वो अपनी प्रकृति को दूषित नहीं करते, हम इस तरह से जो है वो इतने अच्छे साफ़ सुथरे शांत स्वभाव वाले वन को जो है वो गंदा नहीं करते। ये तो चलो सामने की बात है, तो तपोवन की बात ही आ गई, लेकिन इस तरह से ही हमने न जाने अपने कितने ही वन जो हैं वो ख़राब किए हैं। चाहे वो आप फिर थेड़ू वन की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप वो स्लेड़ गोदाम की वनों की बात कर लीजिए, पलनी के वनों की बात जो है वो कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे वन जो है वो ख़राब किए हैं, दूषित किए हैं, और इन्हें प्रकृति को ठेस पहुंचाई है। ये हम सभी को मानना चाहिए कि इंसान ने जो है वो ये सब किया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो, जो कि सचिन कपूर। कहते हैं कि शिकायतें ना करें किसी के साथ भी, है ना, शिकायतें ना करें, अपने आप को जो है वो बदलें, क्योंकि शिकायतें तो तय उम्र रहेंगी, शिकायतें तय उम्र जो है वो रहेंगी, लेकिन अपने आप को जो है वो ज़रूर बदलें। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। श्रोताओं, 5 मई को जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या फिर जब तक कार्य समाप्त नहीं होता या फिर मौसम ख़राब होने पर जो है वो कार्य अगले दिन करवाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ लाइट नहीं है आप सभी समझ गए होंगे, जगह मैं बता देता हूँ, मनेड़, डगवार, पासू, ऊपरी मनेड़ और मटोर, मंदल, मसरेड़ और आसपास के अन्य क्षेत्रों में जो है वो कल यानी कि 5 मई को जो है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, या फिर कार्य समाप्ति तक, या फिर मौसम ख़राब होने पर जो है वो कार्य अगले दिन किया जाएगा। श्रोताओं, तो इसी तरह जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और अब वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोतो अंतराल के बाद आप सभी के रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही बने रहिएगा, यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ,
3: लेकिन ये 20,000 रूपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी, जो कि सचिन कपूर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और कार्यक्रम में अब आप 7:45 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 घायल। और केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में वितरकों के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं, व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 70% तक बहाल। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में टीवीके, जबकि केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और मतदाताओं का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता की शक्ति की जीत हुई है और भाजपा की सुशासन की राजनीति विजयी हुई है। इधर प्रदेश भाजपा ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर शिमला में जश्न मनाया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत सुशासन, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता का विश्वास और भाजपा की विचारधारा की विजय है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन में आयोजित जश्न कार्यक्रम में भाग लेते हुए इसे देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जताए गए विश्वास की मुहर बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा की शानदार विजय पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ते जनविश्वास, राष्ट्रवादी सोच और भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा।
2: नगर निगम पहली नगर निगम है जहां पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल, आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल, और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहां प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे।
1: इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम 92.02% रहा। इस वर्ष कुल 81,417 परीक्षार्थियों में से 74,637 विद्यार्थी सफल रहे, जबकि 3,071 की कंपार्टमेंट आई है। कला संकाय में कांगड़ा जिला के भवारना स्थित पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंशित कुमार ने 99.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। विज्ञान संकाय में शाहपुर छतड़ी की साइला कश्यप 99% अंक लेकर पहले स्थान पर रही, जबकि वाणिज्य संकाय में ऊना जिला के गगरेट की यशस्विनी चौहान, कृषिका और कांगड़ा पहाड़ा स्कूल के आयान संयुक्त रूप से 98.2% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि पुनर्निरीक्षण व पुनर्मूल्यांकन के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके लिए 1,800 रुपए शुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा घोषित 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनके निरंतर परिश्रम और पढ़ाई के प्रति समर्पण का परिणाम है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है, जो राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों व प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_

0: शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरमौर जिले के संगढ़ा उपमंडल में पीयू ललाणी भलोना सड़क पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान भलोना स्कूल की मुख्य शिक्षिका अमरा देवी और उनकी 14 वर्षीय बेटी आराध्य, ऊंचा टिक्कर की 14 वर्षीय प्रियंका और कजवा के 62 वर्षीय सज्जन सिंह के रूप में हुई है। चालक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की फौरी
1: अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,00,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
0: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष आत्माराम ने मुख्यमंत्री को पेंशनरों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया है कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम व पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। प्रदेश भाजपा ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम किया घोषित। 92.02% रहा परिणाम। सिरमौर जिले के संगढ़ा उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की मौत, एक घायल। और केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में वितरकों के पास LPG की कोई कमी नहीं। व्यावसायिक LPG आपूर्ति 70% तक बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: शोध FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आइए श्रोताओं, तो अब मुझे भी दीजिए आप इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और रेडी गुंजन को इसी तरह सुनते रहिए और सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117019। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल गए।
3: अच्छा, ले लूं फिर?
4: हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राख पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देखकर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन।

0: IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें।
1: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
2: सुनो,
3: क्या है
2: ये सूट? कैसा है
3: ये तो बहुत अच्छा है।
2: अच्छा है?
3: हाँ।
2: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
3: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते। ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
2: अच्छा, ले लो फिर।
3: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
2: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देखकर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।